पुराण सिमरत महंदे एक सतसियर सूर नखियत्र मैं एक बाणी प्रभ की सब को बोलै आप अडोल न कबू डोलै सर्व कला कर खेलै खेल मोल न पाइय गुण अमोल सर्व जोत महिंजा की जोत तार रहे हो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नाश नानक तन मैं एहो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संजना कै हृदय सब धर्म संजना सुने

चीर। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सुहोत निदान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए। प्रधान पुरख प्रगट सब लोए,

0: मांगै मोको कर संतन की तोरे। वाहिगुरु जी का खालसा।
1: आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडे आई, कोई नाउ ना जाने मेरा अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै। गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय, अर्जुन हर गोबिंद नौ। सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याय, जस डठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै। कर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब। सब थाई होए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। हे नमाणिया दे मान, नितानिया दे तान, न्योटिया दी ओट, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी की कृपा बख्शिश रहमत होई। आप जी ने अमृत वेले तो लैके संगतां नूं खुले दर्शन दीदार बख्शिश कीते। शाम दे दीवाना दी समाप्ति तो उपरंत आप जी दे पावन सुख आसना दी सेवा, सोहिला साहिब पावन बाणी दे पाठ होए कृपा करनी। बाणी पढ़दे आ, सेवा करदे आ, होइया भुला चुकां दी खिमा बख्शनी, अगे तो समत बख्शनी, सिर ते मेहर भरिया हथ रख के शरदा प्यार भावना दे नाल सेवा करन दे उदम बख्शिश करने जी। सरबात संगतां दीआं हाजरियां दर प्रवान करनियां, चलिया होया कदम कदम लेखे विच लाउणा कृपा करो। आप जी दे सुख आसन तैयार हन, आप अपने सुख आसन स्थानां ते विश्राम करो। संगतां नूं खुशियां बख्शो, फिर अमृत वेले संगतां नूं खुले दर्शन दीदार बख्शिश करके निहाल करना जी। सुख आसन स्थानां नूं चाले पाउण दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कर कर रखे तारे से ही तुदनों गावह जो तुद पावन रथे तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पियो सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिनु पाई कर कर वेखै कीता अपना जिप तिस दी वड़ियाई जो तिस पावै सोई करसी हुकुम न करना जाई सो पात साहु साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत छोड़ी ध्यान की करहै विभूत खिंथा काल कुवारी काया जुक्त डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत वादेश तसयादेश आद नीना नाद नाद जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कटकट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दे कार चलावे लेखे आवह पाव आदेश तुसै आदेश वाद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओ वेखै ऊना नदर न आवै बहुताय ओ बिडाण आदेश तिसै आदेश वाद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस वासन लोए लोए भंडार जुग छुपाया सो एका वार कर कर

नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं कृपाले नमस्त्वं रूपे नमस्त्वं अनुपे नमस्त्वं अपेक्षे नमस्त्वं लेखे नमस्त्वं अकाये नमस्त्वं जाये नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं पंजे नमस्त्वं नामे नमस्त्वं ठामे नमस्त्वं कर्मं नमस्त्वं धर्मं नमस्त्वं नामं नमस्त्वं तामं नमस्त्वं जीते नमस्त्वं पीते नमस्त्वं बाहे नमस्त्वं टाहे नमस्त्वं नीले नमस्त्वं नादे नमस्त्वं शेदे नमस्त्वं गादे नमस्तं गंजे नमस्तं पंजे नमस्तं उदारि नमस्तं अपारि नमस्तं सोएकाय नमस्तं अनेकाय नमस्तं भूते नमस्तं अजूपे नमस्तं नृकर्मे नमस्तं नृपर्मे नमस्तं नृदेशे नमस्तं नृपेशे नमस्तं नृनामे नमस्तं नृकामे नमस्तं नृताते नमस्तं नृकाते नमस्तं नृतूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं नृतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभुगे नमस्तं सोजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं गम्ये नमस्तस्त्रमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमज्वे नमस्तस्तज्वे अदिशं देशे नमस्तं अपेशे नमस्तं नृतामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्देवै नमस्तं अपेवै नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्दयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं गिरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमोऽस्तु अबन्धे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्त्रागे नमस्तं सोहागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वपोकं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोगजोगे नमो भोगभोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वै प्रसाद रूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है नाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंद है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजह है अनंत है महंत है अलीक है नृसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है।

अमृत कर्मे अमृत पर मैं अखल जोगे चल भोगे चल राज अटल साजे अखल धर्म अलग कर्म सर्वंगदाता सर्वंगयाता सर्वंग भाने सर्वंग मान्य सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भोगता सर्वंग रूपा सर्वंग देवं सर्वंग भेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल शांत वै प्रसाद आद रूपनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रमान देव भेवे आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को कुन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप निसार नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आदा शेख दे सौर न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेख ताम नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानता एक मूर्त अनेक दर्शन

सया कृत सह भगवती संतव प्रसाद कहते के आशिज देस है के आपे भिस है के आगन कर्म है के आपन भरम है के आप भिज लोक है के आदित सुख है के अवधूत भरने के बेभूत करने के राज प्रभा है धर्म तुझा है के आशोक भरने के सुरभा परने कि जगदंग रीति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपोन रूप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग महीने के कैदी ने कि रोजी रजा कर रही मेरे हक है कि पाक भी ऐब है कि गैब लु गैब है कि अफुल गुना है कि शाहान शाह है कि कान कुनिंद है कि रोजी देहंद है कि राज करीम है कि कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है सर्वत्र दान्य है सर्वत्र गौण है सर्वत्र पौन है सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाह हो के सर्वत्र भाव हो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधानी है सर्वत्र जापी है सर्वत्र थापी है सर्वत्र पान है सर्वत्र मान है सर्वत्र इंद्र है सर्वत्र चंद्र है सर्वंग कलीमे के परम फहीमे के अकल अलामे के साहिब कलामे के हुस्नुल वजू है तमाम रुजू है हमें सुलसला में सली खत्म होदा में गनी मुल से कस्ता है गरीब उल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल तमा मेरे जूल निदान हरी फुला जी मेरे या एक यकीन है अनेक उल तरंग है अभेद है अभंग है अजी जुल निवास है गनी मुलखिराज है नरुक्त स्वरूप है त्रिमुख विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है सदैवंग स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो प्राज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम।

मित्र पंगी त्रिका मित्र प्रगम त्रिपाद अगंजे अगाध्य सुपंग सर्व पागे सुसर्वानुराग त्रिपुत स्वरूप है अशज है अशूत है कि नरक प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरोगत प्रवाह है सदा वंग सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजोगत अनूप है निरोगत सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजोगत अनूप है चचरी छंद

मेरा बंद है। अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, आलेख हैं, आदेख हैं, आलेख हैं, आपेख हैं, अटाह हैं, अगह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनीन हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं। चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राण सर्वंत्राण सर्वंकर्म सर्वंत्रम

हमें सुलो सलाम है, सुमस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है, के हुस्नल चराग है, के कामल करीम है, के राज करीम है, कि रोजी दिहंद है, कि राज कर हिंद है, करीमुल कमाल है, कि हुसनुल जमाल है, गनीमुल खिराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल शकन है, हिरासुल फिकन है, कलंकंग प्रणास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजाय रहीम है, समस्तुल जुबा है, कि साहिब किरा है, कि नरकम प्रणास है, बहिस्तुल निवास है, कि सरबुल गवन है, हमेशुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परमेश है, समस्तुल अदीस है, अदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीनुल अजमा है, अमीकुल अमा है, करीमुल कमाल है, कि जुरत जमाल है, कि अचल प्रकाश है, कि अमितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है, कि अमितो विभूत है, कि अमितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचल अनंग है, कि अमितो अपंग है, मद पार संत प्रसाद।

सर्वम पर है, सर्वंकर है, सर्व पास्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थाप है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणीकृत तरणीकृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, कृताकृत है, अमृतामृत है, अजवाकृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वम्बर है, कुरुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है, पापंजन है, अर्गंजन है, रिप्तापन है, जपजापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्मवस है, जस के जस है, पुजंग पर्यात शांत

और माया माया अगन सभी को जे ही करते खेल रचाया। जाओ तस भाणा ता जम्या परिवार भला पाया, लिप छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरे मोह उपजै भाव दूजा लाया, कह नानक गुर प्रसादी जिन्हां लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हार वाप मुल्क है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसै विटो रहे लोक बिल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनू सिर सौंपिए विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मनवाए। हर आप अमुल्क है भाव किना कि

कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसे

तत सब को निवे आप को पर को निवे न कोए धरत राजू तो लिए निवे सो गोरा होए अपराधी दुणा निवे जो हंता मिर्गा हे सीस नवाया क्या थी है जर देख।

करे। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुखता हूँ मन बूठा। जिस जाने अपना

प्रभु के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैदिस प्रगटाया नेक की कीरी मैं कल राख है पसम करै लश्कर कोट लाख है।

पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव जानै आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतिपालै जीअन बहुपात जो जो रचियो सुत सहत आत जिस पावै तिस लय मिलाए भगत करहै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास।

हुक्म बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन वसया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अनदिन पूजह गुर के पैर हे लोक सुखिए परलोक सोहेले नानक हर प्रभु आपह मिले।

ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास अष्टपदी। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु काला गा मीठा। सगल समिग्री एक सघट माहे, अनकरंग नाना दृष्टाहे। नाउ निधि अमृत प्रभ का नाम, देही महेश का विश्राम। सुन

आप साच तहरी सब साच उत्पोत आपन संग्राज ताकि गत मित कहीं न जाए दूसरो ए तसोजी पाए।